0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, एशिया के सबसे बड़े खेल मंच से जुड़ी हर हलचल की ताजा अपडेट के साथ मैं हूं कविता
2: एंड आई एम दर्पण।
1: जापान के आईची नागोया में एशियन गेम्स का रोमांच हर मुकाबले में देखा जा रहा है और आज के दिन की भारतीय खेलों की शुरुआत हुई एक मेडल के साथ, और वो भी उस खेल में जहां उम्मीद थोड़ी कम ही थी, मिक्स मार्शल आर्ट्स। जी हां, भारत की सुचिका तारियाल ने MMA के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मंगोलिया के खिलाड़ी को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है और अपने लिए कम से कम एक कांस्य पदक अर्जित कर लिया।
2: Yes, she has made it to the semi-finals, which means the bronze medal is confirmed. India's first medal is confirmed. And what a story Suchika has had. She's 36 years of age, playing her second Asian Games. But the last time around in 2023 in Hangzhou, China, she was representing India in Courage. Before that, she has also tried her hands on Jiu-Jitsu and Judo. And finally, her medal has come in MMA. That tells you that if you keep on knocking the door, eventually it will break down. Talking about breaking down doors, the Indian women's hockey team is breaking some doors down in their first match. They are off to a winning start.
1: बिल्कुल जी हाँ, बात हॉकी की है और एक तरफा मुकाबला जो हॉकी में महिलाओं का खेला गया उसमें भारतीय महिला टीम ने एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को 19-0 से अपने नाम कर लिया और एक बेहतरीन स्टार्ट इंडिया को दिया।
2: Yes, they have defeated Uzbekistan. Of course, Uzbekistan were not considered a big boulder in their way. They were considered a very light team, thin on experience, and India were going in as the favorites. However, the kind of explosivity that India showed was heartening. They were playing in their saffron kits and they started off on the right note in the 6th minute. Lal Rensamai, who was struggling with some strain in her hamstring and had her hamstring heavily taped, scored the first goal, and after that the procession began. Total 19 goals, out of which 8 came off Deepika's hockey stick. 19-0, first game done. The Indian women's team have started off on the right note, and now the eyes will be on India's men's team, who will be in action at 11:30 a.m. by Indian Standard Time. They will be facing Indonesia in their first pool match.
1: बात करते हैं अब अन्य मुकाबलों की, जिसमें अब चेक बॉल की, जहां पर लग रहा था कि इस डेब्यू खेल में भारत को कोई ना कोई पदक जरूर मिलेगा, क्योंकि दो कांस्य पदक के मैच मुकाबले थे निशाने पर, लेकिन यहां पर हमें निराशा हाथ लगी है। चेक बॉल में डेब्यू हुए इस खेल से पदक की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विम्सी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विम्सी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गईं। हार के साथ चौथे स्थान पर रहीं और हिस्ट्री बनाने से चूक गईं। इसी के साथ चेक बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल में क्विम्सी और मोहम्मद अनस इमरान बेग की जोड़ी

0: नाम से 12-9, 12-6 से हारकर बाहर हो गई और इस तरह से एशियन गेम्स में टेक बॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया।
1: यू हैव टू फील फॉर क्विंसी डिसूजा, शी हैड टू प्ले बैक टू बैक मैचेस एंड हर बॉडी कुड नॉट टेक द टोल ऑफ इट। शी वाज स्ट्रगलिंग विद सम एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन हर लोअर बैक ड्यू टू व्हिच देयर वर मल्टीपल टाइम आउट्स कॉल्ड। शी हैड टू टेक मल्टीपल इंजरी ब्रेक्स बट इवेंचुअली शी गॉट अप, कंपीटेड। यस, शी डिड नॉट विन द मैच, हाउएवर वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द वेलर दैट शी एग्जिबिटेड।
0: बात करते हैं तैराकी की, जहां भारतीय तैराकी के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। पुरुषों की बैकस्ट्रोक स्पर्धा में ऋषभ दास ने शुरुआती प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली, जबकि 100 मीटर फ्रीस्टाइल में भारत के तैराकों को निराशा हाथ लगी है।
1: Right, now talking about shooting, where in the women's 10 meter air rifle, the event is still going on and three of India shooter are in business and currently as a team, they are in the silver medal position. However, the official results will be announced after each shooter has finished 6 series. So we are hoping that the Indian trio of Elavelin Valarivan and Sona Maskar and along with them Vidarsa Vinod will be able to secure another medal for India.
0: बात करते हैं वुशु की, जिसका मुकाबला 5:30 पर हुआ, जहां पुरुषों की चांगक्वान फाइनल में भारत के मया मंगलम्बम सूरज अपनी चुनौती पेश कर रहे थे और उन्होंने 9.683 अंक हासिल किए और 11वें स्थान पर रहे। बेहद करीबी मुकाबले में वो पदक से सिर्फ 0.040 अंक दूर रह गए।
1: राइट, टेबल टेनिस, द फर्स्ट मैच ऑफ द मेंस टीम इज करेंटली गोइंग ऑन एंड द गुड न्यूज इज दैट सत्यन नानासेकरन हैज वन द फर्स्ट आउट ऑफ द 5 matches इन द फिक्स्चर इन स्ट्रेट सेट्स। एंड मीनवाइल द सेमीफाइनल ऑफ क्रिकेट women's between Sri Lanka and Pakistan is currently underway and the Indian women's team will be in action in their semi-final very soon. We will be back with the next update at 10:30 a.m. Stay tuned to Akashvani. Asian Games

0: பண்ணிக்கிறேன். மூவிக்கு டைம் ஆச்சு, கிளம்பலாமா?
1: போலாம். ரைட்.
0: லைஃப் ஸ்டைல் ஒழுங்கா இருந்தா உடலும் ஆரோக்கியமா இருக்கும்.
2: அக்கறையோட சொல்றது உங்க ரெயின்போ எஃப்எம் 101.4.
3: நேயர்களே, ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் குறித்து அவ்வப்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
4: ஏசியன் கேம்ஸ் 2026 ஐசி நகோயா.
5: नमस्कार. जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं कविता.
6: And I am दर्पण.
5: अब तक के भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय परफॉर्मेंस में 2 मेडल कंफर्म हो चुके हैं. पहली अपडेट में हमने आपको बताया था सुचिका तारियाल MMA सेमीफाइनल के मुकाबले में पहुंच गई है, जहां कम से कम उन्होंने अपने लिए एक कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है और दूसरा पदक ऑफिशियल तौर पर आया है शूटिंग रेंज से.
6: Yes, so that becomes the first official medal that has been confirmed. Of course, Suchika could go on to get into the final, could wield a silver or a bronze, but the first official medal has come from the shooting range 10 meter air rifle women's team event, where the trio of Elavanil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod have confirmed a silver medal, and India are off the mark on the medals tally. Let us also tell you that out of these three, two shooters have even made it to the final of the individual event, which means Elavanil Valarivan and Sonam Maskar will be in action in the final of the 10 meter air rifle women's individual event final at 11 a.m. which means we could have a couple more medals in the store.
5: और अभी मेडल की उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद स्विमिंग में भी हमारे पास एक मौका है मेडल अर्जित करने का. स्विमिंग में ऋषभ दास फाइनल में एंट्री कर चुके हैं, जहां 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ आज अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगे और इसी के साथ इनके साथ रहेंगे रिजर्व में उत्कर्ष पाटिल, जिनका मुकाबला होगा दोपहर को 2:40 पर. उम्मीद है कि यहां ऋषभ का मेडल आ जाए.
6: Then talking about a medal, where we are thinking that a medal is assured, is cricket. Women's cricket is currently underway. The semi-final match has begun. India are facing off against Bangladesh. India have won the toss, decided to have a bat first, and currently as we speak at the Korogi Sports Park, the duo of Smriti Mandhana and Shefali Verma is on the park, and Smriti Mandhana is just 7 runs away from becoming the highest ever run getter in women's T20 internationals. Will they be able to? Will she be able to break that record? We will know soon. Earlier in the day, Sri Lanka defeated Pakistan and made it to the final. So if India wins this, they will be facing off against Sri Lanka in the finale.
5: बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां हमारी महिला जो टीम है उन्होंने एक शानदार आगाज दिया है. दर्पण ने बताया क्रिकेट के बारे में और यहां पर हम टीटी की बात कर रहे हैं, जहां पर विमेंस टीम इवेंट में ग्रुप एफ के मुकाबले में इन तीनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं. श्रीजा अकुला, दिया चिताले, यशस्वनी घोरपड़े ने यहां पर शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में जो आगाज दिया है टेबल टेनिस में, देखना होगा कि आगे का रास्ता कैसा रहता है.
6: Right, and the men's team is also in action in table tennis. India is facing off the same opponent, Indonesia, in the men's team event. Satya Nanasekaran got us off to a great start by winning the first match, and then in a seesaw battle, Manav Thakkar was pushed to the limit, but he came out on the top as well. He won his match as well, and currently Manu Shah is playing in the third match. 5 matches in total in one fixture, and if you win 3 of them, you win the entire fixture. The women won 3 straight. The men have won 2. If they win this one, they will be winning this fixture as well.
5: बिल्कुल. अब बात होगी हॉकी की, क्योंकि हॉकी में एक अच्छी खबर तो हमारे पास सुबह आ चुकी है, जहां पर भारतीय महिला टीम ने एक शानदार तरीके से आगाज दिया, लेकिन दूसरा मुकाबला भी होना बाकी है, जहां बात होगी पुरुषों की. और पुरुषों के मुकाबले में ये पूल ए का मुकाबला है, जहां आज ये दोनों टीमें इंडोनेशिया के साथ मुकाबला है. 11:30 आज मैदान पर होंगी.
6: राइट. रिमेम्बर इन द hockey event, and a qualification for the 2028 LA Olympics is at stake. So we want both our men's team and the women's team to win gold. The women's team defeated Uzbekistan earlier today by 19-0, where Deepika herself scored 8 goals.

0: 101.4 இங்க எல்லாமே தூள்.
1: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையத்தின் எஃப்எம் ரெயின்போ 101.4. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் 111, டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है, और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया एक बेहद रोचक वेबसाइट का, साथ ही जो वेबसाइट के संस्थापक हैं उनसे बात भी की। आपको याद आया, वेबसाइट थी www.bharatrajya.com और इसके संस्थापक श्री कृष्णा शेषाद्री जी, इनसे प्रधानमंत्री जी ने बात भी की थी। तो आज हम भी कृष्णा शेषाद्री जी से अपनी एक बातचीत के माध्यम से आपको इस वेबसाइट के बारे में बेहद रोचक जानकारी दे रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कृष्णा शेषाद्री जी से बात की थी।
3: साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
4: नमस्ते सर, नमस्ते।
3: भाई, मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
4: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
3: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
4: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
3: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं,

0: मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूं, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
2: हम जानते हैं कि ये बातचीत आपको बेहद रोचक लग रही है, लेकिन आपको हम ज्यादा तो ऑडियो क्लिप नहीं सुनवा पाएंगे। हाँ, कृष्णा शेषाद्री जी से हम बहुत सारे सवाल जरूर करेंगे ताकि इस वेबसाइट के बारे में, उनके इस प्रयास के बारे में हम और ज्यादा जान सके। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कृष्णा शेषाद्री जी का। कृष्णा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद धन्यवाद।
2: आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी वेबसाइट का उल्लेख मन की बात में किया और आपसे संवाद भी हुआ उनका, कैसा लगा आपको, आपका अनुभव कैसा रहा?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे आपके स्टूडियो पे बुलाया। और जैसे बात आती है मन की बात की, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने बनाया था एकदम मैंने एक हॉबी की तरह से बनाया था, मेरे को इससे कोई अपेक्षा नहीं थी, मुझे पसंद था तो मैंने बनाया। तो जब मुझे पता चला कि इस वेबसाइट को प्रधानमंत्री जी ने ना ही देखा है बट उसे यूज भी किया है, उसे एक्सपीरियंस किया है, उसके बहुत सारे फीचरों के साथ खेला है, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई फैमिली एज वेल। द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी वॉज वेन माई मदर क्राइड आफ्टर सीइंग द ब्रॉडकास्ट, इट वॉज टीयर्स ऑफ जॉय दैट शी हैड। मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ गई थी कि हमारे सबका एक लक्ष्य होता है, पूरी दुनिया चाहे ना चाहे हमें अपने माँ पिताजी, वी हैव टू मेक देम प्राउड, और वो मैंने इसके थ्रू किया, दैट वॉज माई बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन। और मेरी जो वाइफ है शी इज अ नेशनल लेवल राइफल शूटर, सो शी नोज हाउ हार्ड इट इज टू अचीव समथिंग एट दैट लेवल, एंड सो शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। और रही बात बाकी दोस्तों या प्रतिक्रियाओं की, मेरे बहुत सारे जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें कोई मैसेज नहीं भेजता था, वो जाग उठे थे मन की बात के बाद। बहुत सारे लोगों ने उसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉजिटिव ओपिनियन या प्रतिक्रिया दी, वेबसाइट के बारे में तारीफ की, विच आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन माई पेरेंट्स, जो हमारे मम्मी डैडी अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को, अच्छा वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा है, जो वो एक फीलिंग मेरे मम्मी डैडी के, आज भी मेरी मम्मी डैडी के आंखों में वो जो प्राइड है, मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी, आज भी मैं थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है कि, मेरे हिसाब से आई थिंक 2 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअली ये मेरी वेबसाइट का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया।
2: अच्छा, ये बताएं कि वेबसाइट शुरू करने का विचार आपको कैसे आया, कब सोचा आपने कि इस तरह

0: कि एक वेबसाइट मुझे शुरू करनी है।
1: एक्चुअली आपने मन की बात में भी सुना होगा, तो मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर मैं एक MBA हूँ, मैं अभी मार्केटिंग में काम करता हूँ। अभी जो मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ है और इतिहास में, उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन बचपन से मुझे इतिहास में एक विशेष तरह की दिलचस्पी है। आई हैड अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। तो एक्चुअली उसका इंस्पिरेशन जाता है मेरी माँ को। वी आर ऑल तमिलियंस। मेरी माँ एक तमिल में एक मैगजीन आती थी उस टाइम पे, वीकली मैगजीन होती थी, उसका नाम कल्की था। तो उन्होंने एक जो साउथ इंडियन चोलास के ऊपर एक एपिक लिखी थी, उसका नाम था पोन्नियिन सेल्वन। एक दो साल पहले उसकी पिक्चर भी बनी थी। तो उस मैगजीन में हर हफ्ते वीकली स्निपेट्स के हिसाब से छपती थी, और मेरी माँ हर हफ्ते वो मैगजीन लेके आती थी और मुझे पढ़ के सुनाती थी। और उन्होंने इतने अच्छे से उस टाइम का, उन चोलास का, उन मंदिरों का और उस लैंडस्केप का इतने अच्छे तरह से वर्णन किया था कि मेरे तभी से मेरी हिस्ट्री में इंटरेस्ट शुरू हो गया था कि ये हम और किस तरह से देखें और किस तरह से जानें। और इस तरह से मैंने इतिहास के और सारे, कई सारे किताबें पढ़ना शुरू की, और वहीं से मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था। और रही बात भारत राज्य के इंस्पिरेशन की, तो मेरे जब भी मैं हिस्ट्री क्लास में, स्कूल में पढ़ता था या कोई मुझे हिस्ट्री सिखाता था, हमारे देश में जिस तरह से हिस्ट्री सिखाई जाती है, उससे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ इट। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक इतिहास जैसे एक सब्जेक्ट को, या एक डेट, या कोई किंगडम, या कोई किंग, उस लेवल पे लेके आ जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि इतिहास जो है एकदम ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जहांगीर ने क्या किया, उससे मेरा क्या लेना देना। तो मतलब हिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है, और हम कभी भी हिस्ट्री को पूरे भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं कि हमको ये नहीं पता कि जब मुगल नॉर्थ में थे, जब बाबर आए थे देश में 1526 में, तब साउथ में क्या हो रहा था। जब वास्को डगामा आए थे 1400s के एंड में, तब नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था। तो हमें एक पूरा इंडिया का व्यू हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता। तो ये जो था, ये आइडिया मेरे मन में 15 साल से इट वॉज ट्रबलिंग मी, मेरे को चुभ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब वो आइडिया आया, तो मेरे पास वो ना टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, ना नॉलेज थी उस आइडिया को एक वर्किंग वेबसाइट बनाने में। लेकिन जब ये AI रेवोल्यूशन आया 3 साल, जब AI ने हमें कोडिंग और प्रोग्राम बनाने की शक्ति दी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे इस्तेमाल करके मेरे 15 साल के ख्वाब को सच बनाया जाए।
0: तो कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐतिहासिक लेखों, दुर्लभ तस्वीरों और नक्शों को जब हम आर्काइव करते हैं, फिर उन्हें जब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस को कैसे आपने डिजाइन किया?
1: अगर आप भारत राज्य के वेबसाइट देखेंगे, तो इसका स्ट्रेंथ ही इसकी सिंप्लिसिटी है। हम ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस या ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम यूज करते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, जो वेबसाइट का जो हीरो है, वो मैप है। आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरनेट में ऐसे ओपन सोर्स मैप मिलते हैं जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपको बराबर मैपिंग मिल जाती है। तो हमने क्या किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मैप है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैप को लिया, और हमने एक सब कॉन्टिनेंट व्यू लिया था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इस 5 कंट्री के मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप्स मिले। और फिर मैंने क्या किया कि AI के थ्रू मैंने ऐसे सोर्सेस या ऐसे बुक्स चूज किए जो इतिहास में एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जैसे जादूनाथ सरकार जी हैं, और ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जो हमने मैसूर किंगडम के एक हयवर्धन राव करके एक हैं, शायद मैं नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर सकता हूँ, मुझसे माफी चाहता हूँ। तो ऐसे मैंने कम से कम एटलीस्ट 25-30 बुक्स को सोर्सेस के नाम पे डिसाइड किया। और फिर मैंने क्या किया कि AI को ये सारे बुक्स में सर्च करने बोला कि एक ईयर में उस डिस्ट्रिक्ट में कौन राज कर रहा था। और इस तरह से मैंने एक पूरी मैपिंग बनाई। अभी जो आप लिखते जाओगे तो 300 CE से आपके पास डेटा है, तो 300 CE टू 2026 में हर एक साल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसने राज किया का मैंने एक मैपिंग बनाया, और वो मैपिंग से आपको भारत राज्य आज दिखता है।
0: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी। यहाँ इसी मोड़ पर मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: हाँ, ये जो गीत है, ये मेरी वाइफ और मेरे पिताजी और मेरी मम्मी, ये तीनों का वन ऑफ मोर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। डेफिनेटली ये गाना सुनिए। ये गाना है अमर प्रेम से कुछ तो लोग कहेंगे।
0: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें होती हैं या दस्तावेज होते हैं, जब हम वो चेक करते हैं तो वेबसाइट की जो स्पीड है बहुत धीमी हो जाती है उनकी वजह से। तो आपने ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक इस्तेमाल की है ताकि ठीक से ये वेबसाइट चल सके?
1: तो हमारे वेबसाइट में मैंने ऐसे कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें या ये कोई नहीं डाला है, क्योंकि मेरा ये मैप बेस्ड वेबसाइट है, तो इसमें हम तस्वीरें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम तस्वीरें डालते हैं तो हम

हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि भारत राज्य का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किस किस भाग में कौन राज कर रहा था, तो मेरे को उस ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ट नहीं होना था। तो इसके लिए पिक्चर्स हो या ऐसे हाई रेजोल्यूशन फोटो हो जिससे यूजर का ध्यान या यूजर का क्या बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस हर्ट हो सकता है या डिमिनिश हो सकता है, वो कोई भी फीचर मैंने नहीं डाले हैं।

0: तो यूजर का ध्यान बट जाता है और हमारे वेबसाइट का कोर ऑब्जेक्टिव है वो शायद कहीं मीट नहीं हो पाता।
1: आपकी वेबसाइट में लोग सामग्री जोड़ सकते हैं और इस तरह से आपके प्रयास में वो भी जुड़ते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि आपने सिक्योरिटी के लिए भी क्या कुछ फीचर्स ऐड किए हैं कि जो हमारे सही तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ ना हो।
0: हमने किसी को भी एडिट राइट नहीं दिए हैं, तो एडिट राइट्स अभी फिलहाल सिर्फ मेरे पास ही हैं। तो कोई भी सुझाव आते हैं, कोई भी हमको करेक्शंस आते हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस आते हैं, तो मैं अपने सोर्सेज जो हमने बुक्स की जो सोर्सेज गैदर की हैं, जो आपको हमारे वेबसाइट के सोर्सेज के टैब में भी मिल जाएंगी, उसके अगेंस्ट मैं मेजर करता हूं। अगर वो सोर्स में होता है तो ही मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूं। पूरा वेबसाइट का कंटेंट है, मैं अकेले अपने कंप्यूटर से उसको अपलोड करता हूं। ये कहीं इंटरनेट में या कहीं ऐसे जगह नहीं है जहां पे आके लोग उसे हैक कर सके। तो इसके लिए जितना मैंने ये वेबसाइट को सिंपल बनाया है। और रही बात सिक्योरिटी या चोरी करने की डेटा की, तो मैंने ये जो वेबसाइट है ये ओपन सोर्स कर दिया है, फ्री कर दिया है। तो अगर कोई भी जाके मेरे वेबसाइट से वो मेरा जो भी सारा डेटा है वो डाउनलोड करके अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकता है। क्योंकि मैंने जब ये वेबसाइट बनाया तो मुझे ये लगा था कि हमको कभी अपना जो नॉलेज है, अपनी जो भारत की इतनी वास्ट नॉलेज का जो हमारी रिपोजिटरी है, वो हमेशा सबको ओपन होनी चाहिए। इट हैज टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और हम वो नहीं कर सकते अगर हमने उसमें कुछ या पे वॉल लगा दिया या उसको पैसे लेके उसको एक्सेस दिया, तो ये जो वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव है टू मेक हिस्ट्री फन टू एवरीवन, वो फेल हो जाएगा। इसके लिए मुझे सिक्योरिटी की कोई डर नहीं। अगर कोई तोड़ के डेटा ले भी जाए तो वो अच्छा ही है, क्योंकि मैं उसे बस विश करूंगा कि इससे भी अच्छा और वो वेबसाइट बना दे। तो अगर आप जब भारत राज्य के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे एक करेक्शंस करके एक टैब होगा, तो अगर वो आप करेक्शंस के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको दो टाइप के सजेशंस आप हमें दे सकते हो। एक है कि अगर हमें कुछ फीचर्स चाहिए, जैसे हम बहुत लोग ने मन की बात प्रोग्राम के बाद बहुत लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि ये वेबसाइट को आप रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल करो, तो वो टाइप के फीडबैक भी हम आप दे सकते हो। और अगर दूसरी टाइप का फीडबैक है, अगर आपको लगता है कि इस प्रदेश में जो हमने मार्क किया है ये जो रूलर है वो गलत है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक के करेक्शंस भी आप हमें पहुंचा सकते हो। इट इज अ वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टैब, और आप उसमें जैसे ही सबमिट करेक्शन सबमिट करोगे वो हमको मेल में आता है, हम उसे रीड करते हैं। अगर वो सोर्सेस के साथ वेरीफाई होता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि करेक्शंस की इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने 1000 डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 1500 साल पे मैप किया है। इसका मतलब है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 1000x1000 टाइम्स एंट्री आपको मिलेगी। तो और हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम गलतियां करेंगे और इस गलती को हमको सबको मिलकर सुधारना है। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री ऐसी चीज है जो एक आदमी या एक वेबसाइट की बस की बात नहीं है, ये हम सबका एक वेबसाइट है और हम सबको मिला के सामूहिक योगदान से ही हम इसकी एंट्री को और एक्यूरेट बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, ताकि अगले कुछ सालों तक ये हिस्ट्री लर्निंग को मजेदार बने।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: सो दिस इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू माई वाइफ। ये हमारी दोनों की फेवरेट मूवी तारे जमीन पर से है और वो जो गाना है खोलो खोलो, तो ये हमें बहुत दोनों को बहुत पसंद है एंड ये एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग है।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। कृष्णा जी, ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आपकी जो सबसे बड़ी सीख थी वो क्या रही और शुरुआती दौर में कैसी चुनौतियां थी?
1: बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न इन दिस एक्सपीरियंस इज बिल्डिंग थिंग्स, कि अगर आप कुछ चीज बिल्ड करते हो और अगर एक चीज क्रिएट करते हो, उसमें जो आपको मजा आता है वो और किसी चीज में नहीं आता। तो जब आप एक चीज आप देखते हो, एक वेबसाइट जो नहीं है, देन इट स्लोली कम्स टुगेदर एंड देन फाइनली एक विजुअली वो आपको दिखता है, जो आपको जॉय और वो एंजॉयमेंट आता है, इट आई डोंट थिंक देर आर वेरी फ्यू एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड विच आई थिंक प्रोबेबली मैच इट।
0: मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे जो दृष्टि बाधित साथी होते हैं, हम देखते हैं अक्सर कि वो पठन पाठन में बेहद रुचि लेते हैं और साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। ऐसे में वो नए नए माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी वेबसाइट पर क्या स्क्रीन रीडर जैसी सुविधा है ताकि दृष्टि बाधित साथी जो हैं वो भी आपकी वेबसाइट से जुड़ सके?
1: ये एक्चुअली आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि

0: ये जो है भारत राज्य जो है एक विजुअल मीडियम का वेबसाइट है, इसमें हम विजुअली इंडिया के मैप को दिखाते हैं, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इन टू टेक्स्ट। और अगर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर भी दें तो एज अ स्क्रीन रीडर हो या जो तकनीक है वो वेबसाइट उनके लिए ऑप्टिमम एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। लेकिन हमने थोड़े कुछ फीचर्स डाले हैं, तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या किसी को और कुछ है तो वो हमने कलर ब्लाइंड मोड इम्प्लीमेंट किया है ताकि वो भी ये वेबसाइट को एंजॉय कर सके।
1: जब आपने वेबसाइट डेवलप की तो उस दौरान बहुत सारे इतिहासकारों, शोधकर्ताओं या फिर कंटेंट राइटर्स के साथ आपका मिलना जुलना हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तो ये बताएं कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे उन्हें समझाई और कहीं इसमें तकनीक तो कोई बाधा नहीं बनी?
0: एक बात मैं अभी सच्चाई में बताता हूँ कि मैंने ये कंटेंट रिसर्च है, ये जो कंपाइलेशन है, ये मैंने अकेले में किया है। लेकिन मैं कभी जिंदगी में ये नहीं भूलूंगा कि मैंने अकेले में किया है, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। द एंटायर कॉन्टेंट, द एंटायर मैपिंग, जो भी आप देख रहे हो भारत राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में किसने काम किया, ये मेरे से बहुत ही बड़े हस्तियों ने, बहुत ही बड़े हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगियां डेडिकेट की हैं, और उसमें से ऐसे किताबें लिखी हैं जिसमें सब कुछ क्लियर है। जैसे हमारे जो सोर्सेस हैं, सबसे बड़े सोर्स जो है वो आरसी मजुमदार जी हैं, जिनके ऑलमोस्ट 10 से 11 वॉल्यूम हैं, जो इंडिया के वैदिक एज से लेके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तक सारी चीजें कवर करती हैं। फिर हमने नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। जादूनाथ सरकार जी, जिसने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे इतने अच्छी किताबें लिखी हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कि इट इज अमेजिंग द डिटेलिंग दैट दे हैव गॉन थ्रू। और बहुत सारे और भी ऑथर्स हैं, जैसे एक ऑथर थे जिसने सिर्फ राजपूतों पे, राजस्थान पे 5 वॉल्यूम लिखे हैं। एक एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तक उन्होंने कवर किया है कि कब क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, युद्ध में कौन सी टेरिटरी इधर से उधर गई। तो मैंने कभी हम मैंने ऐसा नहीं समझा है कि मैंने अकेले में काम किया है। आई हैव ओनली रेफरेंस्ड एंड आई हैव ओनली यूज द वर्क्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक मजुमदार, जादूनाथ सरकार जी, नीलकंठ शास्त्री एंड ऐसा, और एंड सो मेनी मोर ऑथर्स, और बिकॉज ऑफ हुम दिस वेबसाइट इज अलाइव टूडे। मैंने ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कोई टीम ऑफ हिस्टोरियंस है, बट मेरे पास इन जैसे महान दिग्गज हिस्टोरियंस का आशीर्वाद था, जिसके वजह से आज ये भारत राज्य जो वेबसाइट है वो लाइव है।
1: जब प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हो रही थी उस वक्त आपने उनसे कहा था कि हम इतिहास को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो इस बारे में आपके और क्या विचार हैं? एक प्रयास तो आप कर चुके हैं, आपको क्या लगता है हमें अपने बच्चों को अपना इतिहास, अपना गर्व कैसे बताना चाहिए?
0: जो आज हम इतिहास स्कूलों में पढ़ाते हैं, या बहुत सारे जो नौजवान हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको ये एक सोर्स ऑफ विजुअल हिस्ट्री है, और अगर ये देखेंगे तो और हिस्ट्री या इतिहास को और अच्छे से वो याद रख सकते हैं। हम वो ही एंगल से इस वेबसाइट को नियर फ्यूचर में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे वेबसाइट में एक फीचर है ट्रम्प कार्ड का, तो हम सब जब बच्चे थे तब हमने WWE के या क्रिकेटर्स के ट्रम्प कार्ड के साथ बहुत एंजॉय किया है, और आज भी हमको बहुत सारे जो डेटा है वो ट्रम्प कार्ड के वजह से याद है। और हमने ये वेबसाइट में इतिहास के ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं, हर एक एम्पायर के, हर एक किंगडम के हमने ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं। तो अगर वो ट्रम्प कार्ड बच्चे रेफर करें या बच्चे यूज करें, तो उनको इतिहास मजेदार ही नहीं रहेगा, याद भी रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि हम हिस्ट्री को एक स्टोरी बनाएं, और अगर हम स्टोरी की तरह सब बच्चों को ये इतिहास पढ़ाएं, तो वो इतिहास उन्हें याद तो रहेगा ही, बट वो उसे वैल्यू भी करेंगे।
1: हो सकता है कि हमारे न्यू डेवलपर्स इस समय आपको सुन रहे हो, हमारे ऐसे साथी, हमारे ऐसे श्रोता जो अपनी कोई वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप जरा उनके लिए बताएं क्या सलाह आप देंगे, उन्हें क्या क्या फीचर्स अपनाने चाहिए और कैसे तैयारी करें?
0: इफ एनी वन वॉन्ट्स टू बिल्ड एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी छोटी वेबसाइट हो सकती है या कुछ बड़ा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, माई ओनली रिक्वेस्ट टू देम इज आप उसके अंदर जाइए, बिल्ड करना चालू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे वो आपके अंदर अच्छा एहसास होगा, यू विल फील बेटर, एंड देन यू विल नॉट ओनली बिकम अ बेटर बिल्डर बट यू विल ऑल्सो बिकम अ बेटर ह्यूमन। ये जरूर बोलूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात इनिशिएटिव है, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग एंड अ मोटिवेटिंग इनिशिएटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई जरूरत नहीं थी ये वेबसाइट के बारे में जाके मुझसे बात करने की, बट उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, मेरे से बात की वो वेबसाइट में, इससे बड़ा मोटिवेशन एक फॉरगेट टेक पर्सन किसी को भी नहीं हो सकता।

0: और ये मन की बात जब हो गई तो इसमें मुझे एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आया, एक रिन्यूड एनर्जी आई है, जिसमें से मैं इस भारत राज्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊं, और भी ज्यादा पीछे टाइम में जाऊं, जितना भारत का इतिहास है उसे कवर कर सकूं, और इसे एक ऐसा वेबसाइट बनाऊं जो आगे इतिहास के लिए सबसे ज्यादा यूज्ड वेबसाइट हो। तो ये मोटिवेशन मन की बात के साथ आया है, और सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिकॉग्निशन मिलेगा। ये मुझे मन की बात के ये प्रोग्राम के थ्रू, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स आई हैव लर्न्ड।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी। यहाँ इसी मोड़ पर मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: तो ये गाना मेरे जो बॉस हैं सुरेश कुमार सर, आनंद सर और राजेश सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये उनका एक वन ऑफ देयर फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इज फ्रॉम आई थिंक मूवी हम दोनों। द सॉन्ग इज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
2: Even now, when I see myself on the screen, I rarely gag about myself. I'm a very great critic of myself. I may not say so to the world, but because I'm a very healthy sign, because you're on constant process of improving and progress. And that's a very, very great sign for any worker in any field, which is creative.

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। यहाँ आपसे एक बात और पूछना चाहूंगे कृष्णा जी, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके फेवरेट पात्र कौन से हैं? आप किन पात्रों से ज्यादा प्रभावित हुए हैं?
1: अब तो वेबसाइट पूरा बनाए तो सारे पात्र से प्रभावित हुई ही, बट माई फेवरेट इज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, माई फेवरेट इज द ट्रम्प कार्ड सेक्शन। क्योंकि अगर हमने अलग अलग टाइम के, अलग अलग टाइम पीरियड्स के, अलग अलग एम्पायर्स के कार्ड प्रिंट करके हमने हमारे बच्चों या हमारे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनके थ्रू वो हिस्ट्री पढ़ाना मजेदार बना सकते हैं और उनके बच्चों के बीच में वो एक खुद ही में एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है, जो वो समर में या कभी भी जब उनको टाइम मिले तो खेल के ना ही वो रिलैक्स कर सकते हैं, बट इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है आपको आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप रायगढ़ पे क्लिक करोगे तो 300 CE से आज तक रायगढ़ में किस किस लोगों ने राज किया, कितनी बार वो जिला हाथ बदला, कितने राजा आए, कितने राजा गए, ये सब का आपको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो ही नहीं, आपको और भी आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे उसका पॉपुलेशन क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, उसमें कौन से क्रॉप उगते हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन से मंदिर हैं, कौन से आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सबकी लिस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। वो भी आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। आई कैन टेल यू अ फनी इंसिडेंट रिगार्डिंग दिस। किसी कलीग को दिखा रहा था तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा जिला कौन सा है, जहां से तुम हो तो उस जिला का नाम बताओ, तो उसने रायगढ़ बताया। तो हमने रायगढ़ पे क्लिक किया तो रायगढ़ में अराउंड 1100-1200 के टाइम पे एक शिलाहारास करके एक जो डायनेस्टी थी वो रूल करती थी। तो वो उसने देखा और उसने बोला कि मेरा जो सरनेम है वो शिलाहारा है। तो वो उसी को नहीं पता था कि वो एक जमाने के राज परंपरा से था। तो वो एक अच्छा सा कोरिलेशन हो गया था हमको और उसको भी एक अच्छी जानकारी मिली जो उसको तभी तक नहीं पता थी।
0: कृष्णा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और बहुत कुछ हमें आपकी वेबसाइट के बारे में जानने को मिल रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आने वाले समय के लिए क्या आप वर्चुअल रियलिटी या AI जैसे फीचर्स भी इसमें जोड़ने की योजना बना रहे हैं?
1: जैसे मैंने आपको बोला था कि 3D मॉडल्स ऑफ इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे कैलाश टेम्पल हो, या जैसे मैंने बोला था बृहदीश्वर टेम्पल हो, या एलोरा केव्स हो, या अजंता केव्स हो, तो हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू लोगों को उन मॉन्यूमेंट्स को घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मुझे VR के वर्ल्ड के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इसके लिए मैं इसके बारे में आपको विस्तारित से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आई एम श्योर दैट इन द कमिंग टाइम टेक्नोलॉजी विल बी सोफिस्टिकेटेड इनफ वेयर आप घर बैठे बैठे कैलाश टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे फीचर डाल सकते हैं जहां पे लोग घर बैठे बैठे या वो मॉन्यूमेंट में ही वो मॉन्यूमेंट के बारे में जाने और उसको एंजॉय करें। अभी तो फिलहाल 3D मॉडलिंग तो हमने नहीं की, हमने तो एक सिंपल ओवर 2D मैप ओवर लेआउट में हमने एक टाइमलाइन किया है। जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे आगे बढ़े हम ऐसा भी कुछ करें कि भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसको हम एक 3D मॉडल बना के वेबसाइट में होस्ट करें, ताकि लोग वहां पे 3D के थ्रू उस मॉन्यूमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सके। ये एक फीचर है जो हमने पाइपलाइन में रखी है, जल्दी में वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। कोलैबोरेशन से हमारा जो एक्यूरेसी है, ये जो एनरिचमेंट ऑफ डेटा है, ये कोलैबोरेशन से आगे बढ़ेगा। बट हाउ आई विजुअलाइज दिस वेबसाइट एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर इज एन एजुकेशनल एड।
0: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: दंगल टाइटल सॉन्ग है वो।
0: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। मैं ये उम्मीद करती हूँ कृष्णा जी, जब आपसे इतनी रोचक बातचीत आज हमारी हुई है, हमें bharatrajya.com के बारे में पता चला है और प्रधानमंत्री जी ने भी हमें प्रेरित किया है कि हम अपने प्रेरणा देने वाले ऐतिहासिक पात्रों के बारे में जाने आपकी वेबसाइट के माध्यम से, तो जो श्रोता आज हमें सुन रहे हैं ऐसे में बहुत सारे छात्र भी हो सकते हैं, विद्यार्थी हैं या शोध

0: कार्यकर्ता हो सकते हैं, इतिहासकार हो सकते हैं, उन्हें आपके इस प्रयास से जरूर मदद मिलेगी और हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा साथी भी अपने बीते हुए कल को गर्व के साथ याद करें और उसमें आपकी वेबसाइट भी उनकी मदद करती रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको और आपकी पूरी टीम को। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा शेषाद्री जी।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: तो चलते चलते अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: इस गाने के साथ ही पोस्ट बॉक्स नंबर 111 की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मुल्काने अब आपसे लेती हूं अनुमति। आप वेबसाइट देखिए, कुछ सीखिए और जो सीखा है हमें भी आप बता सकते हैं अपने ईमेल्स के माध्यम से, अपनी चिट्ठियों के माध्यम से। और हम विशेष आभार प्रकट करते हैं विविध भारती मुंबई की पूरी टीम का, उनकी मदद से ही हम ये कार्यक्रम तैयार कर पाए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर मैं हूं कविता
2: एंड आई एम दर्पंती किया।
1: आईची नागोया से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहां भारत ने अब तक ऑफिशियली 2 मेडल शूटिंग में अर्जित कर लिए हैं। लेकिन हमने जैसा आपको दिन की पहली अपडेट में बताया था कि हमारी एमएमए खिलाड़ी सुचिका तारियाल ने भी कम

0: ओलंपियम ब्रॉन्ज मेडल कंफर्म कर लिया है सेमीफाइनल में पहुंचकर।
1: राइट, सो लेट्स टेक यू फर्स्ट टू द शूटिंग रेंज वेयर इंडिया हैव कंफर्म्ड टू सिल्वर मेडल्स। द फर्स्ट वन, लाइक वी टोल्ड यू इन आवर लास्ट अपडेट, केम इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट वेयर द ट्रायो ऑफ सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद एंड एलाविनिल वालीरवन brought that silver medal to India. But out of these three, two shooters also qualified for the individual event. They were Sonam Mascar and Elavanil. Sonam Mascar finished sixth. However, Elavanil was constantly in the gold medal position, only to slip up in the dying minutes of the competition, and eventually she finished with a silver medal. So two silver medals from the shooting range today. She lost to Japan's Hinata Taichi, who won the gold medal by registering the games record for this particular event.
0: जी हाँ, शूटिंग में हुई है भारत की चांदी, तो अभी और भी मेडल आने बाकी हैं। बात करते हैं क्रिकेट की, जहाँ भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बना चुकी है 4 विकेट खोकर, और अब बारी है यहाँ पर बांग्लादेश की, जो इस वक्त खेल रही है।
1: Right, Bangladesh are currently 30 for 2 in 4.5 overs. They are huffing and puffing in front of a mountain of runs that the Indian team scored, and in that mountain the major contributor was Shefali Verma.
0: Shefali Verma ने यहाँ पर हीरो रहते हुए इस मैच में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ दिया।
1: Right, first international century in T20 cricket for her. She got there in just 49 balls, 100 not out. She scored, which also happens to be the fourth highest score ever scored by an Indian batter in women's T20 internationals. By the way, this is not the only century that she completed. She also happened to complete 100 sixes in T20 international cricket. So that's another century that she completed. And so did Smriti Mandhana, her partner at the other end. She also completed 100 sixes, and on her way to a score of 37, Smriti Mandhana also today became the all-time leading run getter in women's T20 international. So both these players are now in the top 5, 6 hitters in women's T20 eyes, and also Smriti Mandhana is sitting on the peak of that mountain of having scored the most runs.
0: जी हाँ, और इतने माउंटेन पर पहुंचाने वाली कप्तान की बात तो करना दर्पण यहाँ भूल ही गए। हम बात कर रहे हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर की, जिन्होंने यहाँ पर 40 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। और हरमनप्रीत कौर की तरफ से बढ़ते हैं हरमनप्रीत सिंह की तरफ, जहां पर पूल ए का मुकाबला हॉकी में खेला जा रहा है पुरुषों का इंडोनेशिया के साथ, जहां भारतीय हॉकी टीम ने शुरू से ही ताबड़तोड़ गोल करते हुए 7-0 से फर्स्ट हाफ में बढ़त बना रखी है।
1: Right, and the second half has just begun, and Indonesia have finally earned a penalty corner. But we hope that Suraj Karkera, who's currently standing in the goal as the goalkeeper, will do well to save this. India still leading by 7-0 in the first match of men's hockey against Indonesia.
0: मेंस हॉकी से पहले बात हुई थी हमारी महिला हॉकी खिलाड़ियों की, जहां भारतीय महिलाओं ने भी एक शानदार आगाज दिया है एशियन गेम्स में। 19-0 से महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हरा दिया है, जहां अकेले दीपिका ने 8 गोल किए हैं।
1: Right, and then in table tennis as well, India have begun on the perfect note. The women's team and the men's team both have won their respective first ties. The women's team won it 3-0. In every tie, there are 5 matches. You need to win 3 of them, and they did it without losing a match. Dia Chitale, Yashaswini Ghorpade and Srija Akula were the paddlers on display today. Meanwhile, in the men's section, the same story got repeated. Satya Nanasekara, Manush Shah and Manav Thakkar won their respective games. A similar story is unfolding on the badminton court, where India's women's team is up against Kazakhstan, and PV Sindhu, obviously high expectations from her. She won her first match in 2 straight sets, and so did youngster Unnati Hooda. And we hope that such positive news will keep on coming from Japan, and we will keep you updated. We will meet you next at 1.
2: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த அவ்வப்போதைய நிலவரம் அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். தொடர்ந்து கேட்க இருக்கும் நிகழ்ச்சி

0: A day of dominance.
1: जहां डोमिनेंस की बात हो रही है वहां पर हम बात करेंगे यहां पर हॉकी की, जहां शुरुआत हुई है धमाके के साथ। जी हां, भारतीय महिला खिलाड़ियों ने उज्बेकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 19-0 से करारी शिकस्त दे दी। दूसरी तरफ पुरुषों ने भी इंडोनेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर रखते हुए मैच 13-1 से अपने नाम करके जीत के साथ एक शानदार आगाज किया। मैच में अच्छी बात ये रही कि पूरी ही टीम का योगदान देखने को मिला, जहां 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल दागे। दिलप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 4 गोल किए।
0: So they have kicked off their campaign on the winning note, as was expected. Remember, India wants a gold medal in the Asian Games in hockey, not only because that gold medal holds a lot of pride, but also because it can be a ticket to the LA Olympics. If you win a gold medal here, you qualify directly for the 2028 Olympics. Back to cricket then. India versus Bangladesh, the semi-final match has just come to an end and India were dominant. They batted first, scored 195 for 4, in which the superstar was Shefa Ali Verma. The swashbuckling opener scored 100 not out of 49 balls, her first T20 international century, and along with that she broke a few records. She scored more than 100 sixes now in T20 international cricket, and the same record was also broken by Smriti Mandhana at the other end, who scored 37 of 19 balls. And with that, Smriti Mandhana is now the all-time leading run getter in women's T20Is. So India scored 195 and they bundled out Bangladesh for 81. A silver medal is all but confirmed. However, India will be playing for gold in the final against Sri Lanka.
1: Ji haan, batate hue bahut khushi ho rahi hai ki din jo hai wo महिलाओं की शानदार परफॉर्मेंस के साथ जारी है। जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भी दबदबा लगातार महिलाओं की टीम का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विमेंस टीम के पहले मुकाबले में भारत ने 3-0 से जीत हासिल करके अपने आप को टीम इवेंट में यहाँ पर जीत के साथ एक स्टार्ट दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस टीम इवेंट में 5 मैच खेले जाते हैं, जिनमें से 3 में जीत अर्जित करनी होती है। मुकाबला जीतने के लिए भारत को पीवी सिंधु ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलवाई। मैच में दबदबा दिखाते हुए यहाँ पर दोनों ही उनके युवा शटलर उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने भी अपना अपना मुकाबला जीत ही लिया। इसी के साथ ये टीम यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई है, अब जहाँ टीम के सामने होगा Japan.
0: Right, into the quarterfinals. The same rules are followed in table tennis as well in the team event, where in every tie or every fixture, 5 matches are played. And the Indian women's team started off on a winning note earlier this morning by defeating Indonesia 3-0. The men's team repeated that and they also defeated Indonesia by 3-0. However, now the women's team is playing its second tie, where Singapore is giving them a little bit of a run for their money. And despite that, Team India is still in the lead. Yashaswini Ghorpade has won her first match, and currently Srija Akula is in a tussle with Ming Loy of Singapore. Currently, the match is tied at 2-2. We are going into the next set. So it will be a fascinating watch in table tennis.
1: कहानी खत्म नहीं होती है। अब से थोड़ी देर बाद तैराकी में हमारे पुरुषों की बैकस्ट्रोक स्पर्धा में भारतीय तैराक ऋषभ दास फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। सो लेट्स होप फॉर इंडिया।
0: राइट, सो वी विल होप दैट अनदर मेडल इज कंफर्मड इन स्विमिंग। वी विल बी बैक विद अनदर अपडेट एट 2:30 PM एंड होपफुली वी विल हैव द न्यूज ऑफ अनदर मेडल।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த அவ்வப்போது நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். எஸ் திரைகானம் தான் கேட்டுட்ருக்கீங்க, எஃப்எம் ரெயின்போவில். அடுத்து ஒரு பாடல் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன், எஸ் சாரதா திரைப்படத்திலிருந்து. இந்த படத்தை பற்றின ஒரு சின்ன சுவாரஸ்யமான தகவல் மட்டும் சொல்கிறேன். அந்த காலத்தில் 1962 அப்படின்னு நினைக்கிறேன், அந்த காலத்தில் வந்து இந்த திரைக்கதையை கொண்டு போயிட்டு படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஐயோ வேண்டாம் இது ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஓகே, இல்லை நான் எடுக்கிறேன் அந்த கதையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஎல் ஸ்ரீனிவாசன் தான் வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அப்படி கேஎஸ் கோபாலகிருஷ்ணனுடைய முதல் திரைப்படம் இது வந்து. அவர் பெரிய ஜாம்ப அவர் வந்து டிரெக்ஷனில், அவருடைய முதல் படம் இதுதான். படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் இந்த படம் ஏன் கான்ட்ரவர்சி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் பெரிய வெற்றி.

0: whom they defeated a few days back in the Women's Asia Cup final, they will again retain their gold medal, retain their crown of the Asian Games as well.
1: क्रिकेट के साथ ही जीत का सिलसिला बढ़ाया है आगे हॉकी के खिलाड़ियों ने. जी हाँ, हॉकी में भी दोनों ही टीमों के रिजल्ट हम सबके सामने आ चुके हैं. पहले मुकाबला खेला गया महिलाओं का, जहां पर भारतीय टीम ने उज़्बेकिस्तान को शानदार तरीके से 19-0 से हरा दिया. इसी के पीछे पीछे भारतीय पुरुषों की भी मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से हरा दिया. और बात करें अगर इसी के साथ स्विमिंग की, जिसका मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है, यानी 2:40 पर ये मुकाबला होगा. तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा पर भारतीय तैराक एक बार फिर से मेडल के लिए दावेदारी पेश करते नजर आएंगे. ऋषभ दास यहां पर होंगे हमारे सामने. और आपको ये भी बता दें कि जो सारी प्रतिस्पर्धाएं हैं नागोया शहर और आईची प्रीफेक्चर में हो रही है, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रही हैं.
0: राइट, सो वी होप दैट ऋषभ दास, हु विल बी फीचरिंग इन दैट फाइनल, विल बी एबल टू गेट अ मेडल एज वेल. हाउएवर, फ्रॉम द स्विमिंग सेंटर इन टोक्यो, वी मूव आवर attention to the Sky Hall in Nagoya, where the table tennis event is happening. As we told you in our last update, that Indian women's team had won their opening contest against Indonesia, and the men's team also started off on a winning note by defeating Indonesia. However, in their second tie, Singapore is giving the Indian women's team a run for their money. In each tie, there are 5 matches played, and you have to win 3 of them in order to win the tie and take the points out of it. In the first match in this particular tie against Singapore, Yashaswini Ghorpade got India off to a good start. However, after that, Shrija Akula has lost her match, and Dia Chitale has also lost her match. So now in the remaining 2 matches, India need to make it or break it, otherwise they will lose this fixture. On the other hand, in the badminton court, there was not much of competition. India secured a comfortable victory against Kazakhstan, riding on good performances from Unnati Hooda, Tanvi Sharma and PV Sindhu. And based on that, now they are into the quarterfinals, where they will be facing Japan.
1: बात करते हैं वुशू की, जिसमें अब से कुछ देर बाद भारत के 2 खिलाड़ी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे. 52 किलोग्राम में अपर्णा सांडा इवेंट में ईरान की सोगंद सिंह काई चेतन से भिड़ेंगी. वहीं पुरुष 75 किलो में विक्रांत बालियान का मुकाबला ईरान के सोहेल मौसवी से होगा. ये भी सांडा इवेंट का ही मैच है. सांडा इवेंट सांशो की कहा जाता है वुशू मार्शल आर्ट का फुल कॉन्टेक्ट कॉम्पिटिशन है, जिसे फाइटिंग इवेंट माना जाता है. वुशू की उत्पत्ति चीन से हुई है. ये चीनी मार्शल आर्ट है, जिसे दुनिया भर में कुंग फू के नाम से भी जाना जाता है.
0: सो वील कीप आवर आईज ऑन दैट एंड वी विल गिव यू द अपडेट एज सून एज पॉसिबल एज एंड व्हेन इंडिया विन द मेडल्स. फॉर नाउ दिस इज दर्पण एंड कविता साइनिंग ऑफ विद द मैसेज दैट वी विल मीट अगेन एट 3:30 PM विद द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द 20th एशियन गेम्स.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த அவ்வப்போதைய நிலவரம் கேட்டீர்கள். தொடர்ந்து கேட்கலாம். தொடர்ந்து ரெயின்போ மெலோடிஸ் நிகழ்ச்சியில் கீதமாய் இசையாய் பாடல்களை கேட்க இருக்கிறோம். செந்தமிழ் பாட்டு திரைப்படத்திலிருந்து வாலியின் வரிகளில் இளையராஜா மற்றும் MS விஸ்வநாதன் இசையில் SP பாலசுப்ரமணியம் மற்றும் KR அனுராதா இணைந்து பாடிய பாடல்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान के आईची नगोया में खेले जा रहे 20वें एशियन खेल की लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता
2: एंड आई एम दर्पंती किया।
1: अब तक हमने आपको बताया आज के दिन में जापान में हो रहे एशियन गेम्स में शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन में भारत का दबदबा रहा, लेकिन टेबल टेनिस के टेबल पर भी इस वक्त चल रहा है एक कांटे का मुकाबला।
2: राइट, इट इज द वुमेन्स टीम इवेंट वेयर इंडिया वन देयर अर्लियर फिक्स्चर अगेंस्ट इंडोनेशिया। हाउएवर, सिंगापुर इज कॉन्स्टेंटली गिविंग द इंडियन टीम अ रन फॉर देयर मनी। एंड लेट मी टेल यू दैट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, इन अ पर्टिकुलर फिक्स्चर और अ पर्टिकुलर टाई, फाइव मैचेस हैपन बैक टू बैक एंड देयर India started off on a winning note. However, then Singapore came roaring back to win the next two. India won the fourth one, and hence we went into the final match, which was supposed to be the deciding match. And that deciding match between Singapore's Ming Loy and India's Yashaswini Ghorpade has also gone into the final set. And just as we speak, Yashaswini Ghorpade has scored the winning point. It looks like India have won this particular match. So good news coming your way. Both opening matches have been won by the Indian team. The Indian women's team are off to a winning start. And just as we say that, 25-year-old Manu Shah is gearing up to face an opponent from Iran in the men's team event. This is the second fixture for the men's team as well. They featured against Indonesia earlier today and they won it 3-0. Will they be able to defeat Iran as well? We will find out soon.
1: जी हाँ, लेकिन जहाँ कुछ उम्मीदें अभी बरकरार हैं, ऐसे में आज एक मेडल का मुकाबला होना था जिस पर फिर चुका है पानी। मैं बात कर रही हूँ पुरुषों के 100 मीटर बैकस्ट्रोक में ऋषभ दास का जो नंबर था वो छठे पायदान पर रहे 54.77 के अंकों के साथ, और छठे पायदान पर रहकर पदक की दौड़ से बाहर होकर इन्होंने अपना सपना अधूरा ही छोड़ दिया। इसी के साथ अब बात करते हैं वुशू की, जिसमें अब से कुछ ही देर में खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले में चुनौती पेश करेंगे। 52 किलोग्राम में अपर्णा सांडा इवेंट में ईरान की सौगंध सिकाई चेतन से भिड़ेंगी। वहीं पुरुषों में 75 किलोग्राम वर्ग में विक्रांत बालियान का मुकाबला ईरान के सोहेल मौसवी से होगा।
2: Yes, and we will keep you updated about these events as and when they happen. But in case you missed out on the earlier updates, let's give you a quick rundown of what has transpired in Japan today, starting with shooting.
1: शूटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले शूटिंग में आए

0: है दो मेडल जो कि हमें मिले हैं 10 मीटर एयर राइफल विमेंस टीम में। ये जीते हैं हमारी टिकड़ी ने एला वनिल वला रिवन, सोनम मस्कर विदर्शा विनोद ने। वहीं इसी के इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में एला वनिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
1: Right, and in the hockey stadium also, India were the dominant force. The men's team started off their campaign with a 13-1 win over Indonesia. Meanwhile, the women were a step ahead. They defeated Uzbekistan by 19-0.
0: क्रिकेट की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने अपना कदम रख लिया है। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है और अब वो गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका से भिड़ेगी।
1: यस, शेफाली वर्मा स्कोर्ड अ सेंचुरी टुडे, 100 नॉट आउट ऑफ 49 बॉल्स। शी वाज द स्टार, कंप्लीटेड 100 सिक्सेस इन T20I क्रिकेट। सो डिड स्मृति मानधना, हु हैज नाउ आल्सो बिकम द ऑल टाइम लीडिंग रन getter in women's T20I. So, two medals coming in shooting, one in the individual event in the women's 10 meter air rifle, one in the team event, and by the virtue of qualifying for the finals, the women's cricket team is also assured of a silver. Another athlete of ours is assured of at least a bronze, and that is Suchika Tarial in MMA in the 60 kilogram category. She defeated her Mongolian opponent in the quarterfinal and got herself into the semi-final. Meanwhile, in the badminton court, led by PV Sindhu, the Indian women's team in the team event also went off to a winning start. PV Sindhu won her match in straight sets, and so did Tanvi Sharma and Unnati Hooda. 3-0 against Kazakhstan, India into the quarterfinals in this event as well.
0: चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं मेडल टैली पर, जहां भारतीय टीम अभी 10वें पायदान पर ही काबिज है दो सिल्वर मेडल के साथ, और पहले पायदान पर है चाइना की टीम।
1: Right, so those two silver medals for India. However, remember, two more are confirmed. They are not yet reflecting on the medals table. However, we hope that they get converted into gold. Still early days, still a lot of medals to be won, and we will keep you updated. You were listening to the live updates of the 20th Asian Games live on Akashvani.
2: Abhi aap Asian Games 2026 ki update sun rahe the.
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் கேட்டீர்கள். தொடர்ந்து திரைகானம் நிகழ்ச்சியில் பல பாடல்கள் காத்து கொண்டிருக்கின்றன. தொடர்ந்து நாம் அதை கேட்கலாம். நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பாடல் சிவாஜி திரைப்படத்திலிருந்து ஹரிஹரன் மற்றும் அது ஸ்ரீ குரலில், வைரமுத்து வரிகளில் ஏ ரஹ்மானின் இசையில் கேட்டிணைந்திருப்போம்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान के आईची नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कविता।
2: आई एम दर्पणती किया।
1: 45 देशों के करीब 17,000 एथलीट 43 खेलों में 469 मेडल्स के लिए मशक्कत कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत के अब तक 2 सिल्वर मेडल आ चुके हैं और इसके अलावा अभी 2 पदक सुनिश्चित हो गए हैं। पहला है MMA और दूसरा है महिला क्रिकेट में।
2: Right, but currently we will take you to what is the Sky Hall in Nagoya, where the table tennis competition is happening. And after getting off to a winning start and winning their respective first fixtures, both the Indian men's team and the Indian women's team have been given a run for their money in their second fixture. In their second fixture, after winning against Indonesia earlier in the morning, the women's team ran into Singapore, a team that really pushed them to the edge in a seesaw battle that went down to the wire. Eventually, India came out on top. However, the men's team is currently huffing and puffing against Iran. Against Iran, we started off with a battle between Manush Shah and Naushad Alamian, who defeated the Indian paddler. After that, a 16-year-old Faraji of Iran defeated India's Manav Thakkar. And currently, Harmeet Desai is in the third match, is playing against Naushad Alamian and has come to the brink of losing the first set. The score is currently 11-10, and just as I say that, he loses another point and eventually loses the set as well. So India have already lost 2 matches and they have lost this set as well, which means in this particular fixture they are struggling and they need to win almost everything from here on in order to win in this fixture.
1: बात करते हैं वुशु की, जहां पर अभी से कुछ ही देर पहले मुकाबला हुआ महिलाओं का एशियन गेम्स 2026 में। भारत की डेब्यूटेंट वुशु खिलाड़ी अपर्णा को महिला सांडा 52 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में ईरान की सोगन सिकाई ए चेतान के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ अपर्णा का एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। हालांकि एशियाई स्तर के इतने बड़े मंच पर उनका पदार्पण अपने आप में उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अनुभव है। आज नतीजा भले ही अपर्णा के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन ये सफर अभी शुरू हुआ है और आने वाले मुकाबलों में यही अनुभव उनके काम आएगा। वही बात करते हैं अगले मुकाबले की जो अभी होना है। बात करते हैं विक्रांत बालियान की, जिनका मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। और अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं तो ये सेना में कार्यरत हैं, अपनी ड्यूटी के साथ साथ देश के लिए रिंग में भी कड़ा मुकाबला लड़ते हैं। सीनियर्स को देखकर इन्होंने अपना सफर शुरू किया था और अब उसी की प्रेरणा लेकर इन्होंने इस खेल को चुना और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं अगर सोहेल की बात करें तो सोहेल भी इनसे कम नहीं है, इनके ओपोनेंट जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो ये मुकाबला कड़ा हो सकता है।
2: Right, Sohail comes from Iran, and Iran is giving India a run for their money on the table tennis table. What would be the outcome in Wushu? We will find out together. However, in case you missed out on the earlier updates, let's give you a quick highlight of what has transpired for India today. First of all, start

0: में एशियाई खेलों की लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता
1: एंड आई एम दर्पण तिकिया।
0: हमारी पिछली अपडेट में आपने सुना था टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जा रहे थे और अब हमारे पास है उस मैच का रिजल्ट।
1: Right, so Iran proved to be a tough opponent for Team India and India ended up the men's team we are talking about. It is the men's team event we are talking about where the

0: करने वाली सुचिका की, जो अपना मुकाबला कल खेलेंगी सेमीफाइनल में.
1: Right, and apart from that, a lot of action is in store tomorrow. So these were the highlights of today, but what's in store tomorrow? Suchika's match is definitely one to keep an eye on. She will be competing in her semi-final. And apart from that, soft tennis will be on display tomorrow, where the mixed doubles pair of Aditya Tiwari and Jay Meena will be taking the court. Remember, this is a pair which won the bronze medal in the World Championship as well as in the Asian Championship. Tomorrow, they are supposed to compete in three matches back to back. One against Cambodia, the other one against Mongolia, the third one against South Korea. And if they make good in these three matches, then they obviously progress towards the knockouts and reach the medal stage as well.
0: बात करते हैं तैराकी की, जहां आज का दिन तो कुछ खास नहीं लेकर आया, लेकिन कल हो सकता है उम्मीदें बरकरार रहे. बात करेंगे आकाशमणि की, जो 50 मीटर फ्री स्टाइल में कल तैराकी करेंगे. इसके साथ साथ जितेश 50 मीटर फ्री स्टाइल में रहेंगे. इसके साथ साथ धनु सुरेश 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में रहेंगे. बात करते हैं 4x200 मीटर रिले में शिरकत करेंगे दक्षिण शशि, अनीश गौड़ा, सत्य प्रकाश और वेदांत माधवन. इसके साथ ही 50 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास और हरि नटराज दिखाई देंगे.
1: Right, and then shooting, of course, can't keep your eyes off shooting, can we? Men's 10-meter air rifle will get underway. Himanshu Dhillon, Parth Mane and Rudraksh Patil will be in action. Then skeet competitions will also start. The men's team will have Ananjit Singh Naruka. Apart from him, there will be Bhavteg Gill and, of course, Mehraj Ahmed Khan. In the women's skeet, there will be Reza Dhillon, there will be Maheshwari Chauhan and there will be परिणाज धालीवाल एज वेल.
0: पारंपरिक मुकाबलों की बात करें तो सबसे पुराना खेल कबड्डी भी कल अपनी शुरुआत करने जा रहा है. मेंस कबड्डी टीम का सामना जापान से होगा और महिलाओं को होगा बांग्लादेश के साथ. वहीं बात करते हैं हॉकी की, जिसमें शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय महिला टीम पूरे जोश में है और कल टीम का मुकाबला इंडोनेशिया के साथ होने वाला है.
1: Let's not forget table tennis, where the men's team and the women's team both will be locking horns with arch rivals Pakistan. So it is India versus Pakistan in the men's team event as well as India versus Pakistan in the women's team event. Also, let's not forget another racket sport. We are talking about badminton, where today the women got off to the perfect start, but tomorrow the men will be expected to do the same. So Lakshya Sen, Ayush Shetty, HS Pranoy, Kidambi Srikanth, Chirag Shetty, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and a few other names are in the squad. Who will take the court in their match against Bangladesh remains to be seen.
0: वुशु में, जहां आज के दिन का अभियान तो हमारे खिलाड़ियों का समाप्त हुआ, लेकिन कल का दिन नई शुरुआत लेकर आएगा. सांडा में आर्यन 56 किलोग्राम भार वर्ग में अफगानिस्तान के शहजाद शाफी के साथ भिड़ेंगे. वहीं महिलाओं में 60 किलोग्राम के सांडा में रोशबीना देवी हमें दिखाई देंगी. चांगकुआंग में महिलाओं में नेमान वांगसु महिलाओं की प्रतिस्पर्धा करेंगी.
1: Right, and in boxing, in the 70 kilogram category, Sumit will be up against Thailand's Sensiri Bunjong. And before all of this, we will have the Sepak Takraw men's team Regu event, where India will be locking horns with Japan. So lot in store tomorrow, but very quickly we'll wrap up with the medals tally.
0: Medal tallies ki baat kare to yahan par Bharatiya team 10th sthan par kabiz hai, 2 silver medal lekar pehle paidan par hai. Yahan par China ki team 11 gold ke साथ दूसरे पायदान पर है जापान 6 गोल्ड मेडल के साथ.
1: In case you missed our hourly updates today, don't worry, because sharp at 10 PM on the same frequency, you will be able to hear a consolidated report. With that, me Darpantikya and my colleague Kavita Sharma say goodbye. Stay tuned to Akashvani.
2: You're listening to the Asian Games 2026 update.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, जापान के आईची नागोया में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ मैं हूं कविता।
2: एंड आई एम दर्पण टिकिया। इट हैज बीन अ फैसिनेटिंग डे फॉर द इंडियन कंटिंजेंट। ऑफ कोर्स वी हैव गिवन यू द अपडेट हाउ द हॉकी टीम्स डोमिनेटेड देयर ओपनिंग फिक्स्चर बोथ मेन एंड वुमेन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। शूटिंग रेंज इज वेयर इंडियाज फर्स्ट मेडल्स केम फ्रॉम, टू सिल्वर मेडल्स इन द वुमेन्स 10-meter air rifle, one coming in the team event, one an individual medal won by Elavalin Valarivan. So two silver medals to India are confirmed. Apart from that, we are also assured of another medal coming from the women's cricket team who defeated Bangladesh in the semi-final today and will now be competing against Sri Lanka for the gold medal on the 22nd of September.
1: इसके साथ ही पदक की उम्मीद बरकरार है और एक पदक सुनिश्चित पहले ही हो चुका है। मैं बात कर रही हूँ एमएमए में कांस्य पदक सुनिश्चित

0: आपकी वाणी आकाशवाणी.
1: एंड हियर इज द अपडेट फॉर टुडे फॉर द 20th ऑफ सितंबर द एशियन गेम्स 2026.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: नमस्कार. खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं. एक तरफ जापान की धरती और आईची नगोया का खेल मैदान है तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है. आईची नगोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है.
4: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं. 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है.
3: तो अब आज की सुर्खियां. भारत ने शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना. एलेवेनिल वलरिवन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी. एलेवेनिल सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर. मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा. सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का. भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची. खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला. हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज. अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत. और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता. अब जापान से अगला मुकाबला.
4: वक्त बदल रहा है और खेल भी. इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है. ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल. भले ही खेल नए हो लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है. जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है. सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है. एमएमए में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा.
5: आईची नगोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत के लिए आज का दिन मिला जुला रहा. महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय

0: सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेघ बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में एमएमए में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
1: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया, लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
2: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारीवन, सोनम मास्कर और विदर्शा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलीन ने 633.5 तो विदर्शा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलीन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा, तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गईं। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावनिल वलारीवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
3: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
1: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया, बता रही हैं अमीषा।
4: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लालरम सियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।

0: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 की करारी शिकस्त दी। पहले मैच में श्रीजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। श्रीजा ने ये मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डनेजर को पांव जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में श्रीजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में श्रीजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी पांचवें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला पांचवें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एक तरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीशा।
1: 20वें एशियन गेम्स आईची नागोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजेय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कंफर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
0: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेक बॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए, परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
2: डेब्यू हुए टेक बॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेक बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दाव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमरान बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहाँ जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहाँ मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला और इस तरह से एशियन गेम्स में टेक बॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेल

0: के एक नए रूप टेक बॉल की पहचान जरूर बन गई।
1: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल पांचवें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में छठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ पांचवें स्थान पर रहे। वह ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ दो दो हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमिशा की रिपोर्ट।
2: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गयी। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
1: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही है कविता।
3: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंध सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
1: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। शॉट टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी। इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सु महिला चेंगक्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारुका, भवतेक सिंह गिल और मैराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रायजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में

0: पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट दो में ऋषभ दास और श्री हरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्री स्टाइल के हीट टू में आकाश मणि उतरेंगे। हीट फोर में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट वन में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के हीट टू में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। एमएमए के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ दो दो हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसिरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
1: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीत कर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है जिन्होंने 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
0: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। अब जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिशा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.